0: rasa.
1: कुलबडू विसी पहाकट अधिक संख्या के संबंध में जात्यंतर मूलतन के जायगत विजया